नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषतुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमः।